0: Let me now take you through the top story of the hour. The Himalayan flood fury has left a trail of death and destruction all across Nepal. The death toll has now touched even 100. Over 60 people have also been reported to be injured and are now receiving treatment in different hospitals of the country. Satellite images now show staggering scale of devastation, buildings and bridges even swept away, entire areas transformed by the raging waters. On your screens are the before and after visuals, the satellite visuals from the flood hit areas. But the rescue mission is now in full swing. The Nepal Army, the police and the armed police force are now on ground with more than 250 civilians already rescued and the search for those missing still continuing. Remember that NDTV is the only channel on Ground Zero bringing you the latest visuals and updates from the heart of the disaster. From washed away bridges to submerged towns, our reporters are tracking the devastation and the rescue efforts. Take a look at this report filed by my colleague Sikta Deo.
1: Ground Zero, we are at Nuwakot area of Nepal where the flash floods have hit and damaged and destructed this entire area. You can see a section of people who have taken some rescue on top of some buildings there. Since morning, they have been waiting for relief and rescue personnel to reach them. A few of them we spoke to said they haven't had a sip of water since morning. A massive destruction. You can see the vehicles here submerged totally in destruction which has come with the flash floods which has hit this area. Tibet border. This was the road which used to take the people, the locals, the tourists to the Tibet border. But after today's flash flood, the roads are submerged in silt. It has been continuously raining. The challenge for the army personnel is to reach the higher up mountains. Well, we are at Ground Zero and we can say on record that beyond this has been a challenge, not only for a media team like us to move ahead, but also for the rescue workers, the police personnel and the army. The helicopters are doing their sorties, but still it has been a challenge because the weather has not been conducive and it is continuously raining and it is dark now. So the rescue operations will have to resume tomorrow morning. And till then, the road to the Tibet border where the destruction has been manifold than this area will be coming out, and the ground reports from that area will be coming out tomorrow morning. We are at the Nuwakot district on the banks of Thrissuri River, and this is village Vidur where the destruction is evident from these pictures. And right now here we are with some locals who are trying to locate their known ones, the people from their family, their friends. Aapka naam aur aap kisko dhoondne ke liye aaye hain Kathmandu se?
2: ये इधर का हमारा वो जो घूम गया जो लोग है इधर उस लोग का ढूंढने के लिए आए, लेकिन कुछ नहीं खराब पता चला.
1: फंसे हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं?
2: फंसे उन्हें उन्हें जानकारी कुछ नहीं है.
1: Well, that's the biggest challenge right now. At the moment we reached at this Ground Zero, it has been continuously raining. The challenge here is to reach the higher mountains, the higher reaches of the villages where the destruction will be much more than what we are seeing here.
3: हम इस वक्त नेपाल के नुवाकोट जिले में मौजूद हैं और हम रुके थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और हम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि हम जब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं तो कुछ और रिपोर्ट्स हम आप तक पहुँचाएं. तो इस बीच हमें मिले हैं सौरभ और सलीना जो यहाँ पर हमारे साथ रुके हुए थे, और हम जब इनसे बात की तो हमें पता चला कि सौरभ और सलीना शख्स हैं जो आज इस इलाके में आए सैलाब के पीड़ित परिवारों में से हैं. इन्होंने अपनों को खोया है नदी के उस पार, त्रिशूली नदी के उस पार. परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं, ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं. इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गई. करीना कह रही थी जो कपड़े इन्होंने पहने हुए यही है इनके पास अब, और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह, वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है। सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ, और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए इस इलाके के। ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा। आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग बच निकले। क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
4: उस समय तो मैं सो रहा था, तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे, तो नया पुल अभी बना हुआ है, वहाँ पे पहुंची तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था, वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सहित पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया।
3: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
4: रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये
3: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया, गाँव के गाँव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए, और इस तरह से ये तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। लीना, ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
5: पहली बार
3: आपने देखा। आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है, ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है। कैसे आप लोगों ने, क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?
5: डर लगा कि बाँच दिन होला थियो, अनि मेरो पछि पछि आयो बाढी से,
3: भाग भाग के आप लोग,
5: मेरे पीछे पीछे था बाढी,
3: बाढ़ का पानी आपके पीछे पीछे था, और आप आगे आगे भाग रहे थे।
4: थोड़ी सी देर होता था हम लोग को बाहर ले जाता है, हम लोग के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था, वो बाहर ले,
3: सब भाग रहे थे।
4: हाँ, सब भाग रहे थे, हम लोग के पीछे एक दो तीन लगभग चार आदमी बाहर ले,
5: हमारे पीछे जितने भी लोग थे सबको भगा
4: ले, और ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए, इसलिए थोड़ा से
3: वैसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था, आप लोग भाग रहे थे, अभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए, तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा। और आप लोगों खुश नसीब लोगों में हैं जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है, और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे। वहां पर कुछ जानकारी अपने परिवार से बात हो पा रही है?
4: परिवार से कॉन्टेक्ट हुआ है, उन लोग अभी सेफ है, तभी लेकिन अभी
3: फोन पे ला पाए, अपने माता पिता से बात कर पाए?
4: अभी तो नहीं लग रहा है, अभी
3: नहीं लग रहा,
4: अभी कांटेक्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं
3: है। अब हिम्मत करनी होगी, कल एक नई सुबह है, और अपनों के पास आप लोगों को पहुंचना है, और ये कोशिश कल आप लोग करेंगे, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं।
4: पहले फैमिली के पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर न्यू स्टार्टअप, जीरो से उठ के आएगा तो जीरो में ही स्टार्ट किया जाएगा। अभी इधर से देखा जाए कुछ मदद उदर होता है,
3: आप दोनों के हौसले को सलाम, और उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार जो इस वक्त उस पार फंसा हुआ है वो सलामत है, और आप लोग कल उनसे जल्द से जल्द मिले, यही शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। सौरभ करीना, शुक्रिया। The silt here has submerged each and every building and the remains look like this. Well, we are here at a government premises which we used to take care of the cows and the buffaloes here. It was an animal welfare center which is now submerged in silt, like you can see here. The rescue team is here. When we spoke to them, they said we have no idea how much damage or destruction this flash flood has managed to create in this area. They have been rushed from Kathmandu, and they are still awaiting orders and the silt levels to dry up a little. And overhead we can hear the army helicopters, choppers doing the rounds to keep an eye if there are any survivors up there in the mountains from where the flash flood started, if they can be rescued. The weather is not so good, and the rescue operation is the biggest challenge, the weather here, for the rescue operation.
6: ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो नेपाल के उत्तरी जिला में, ये रसुआ नाम से जाना जाता है, रसुआ, नुआकोट, धादिंग, गोरखा, ये चार पांच जिला बहुत ही प्रभावित है। और जो हमारे सरकारी और संचार माध्यम से जो जानकारी मिली है उसमें यही है कि वहां पर तिब्बत के बॉर्डर पर कोई जो ये हिमताल फूट गया है, दूसरे लोग कहते हैं कि बाढ़ आया है, और लगभग लगभग अभी भी लोगों का कहना है कि 4-5 हजार लोग लापता है। लापता का मतलब है कि कन्फर्म नहीं, सरकारी गृह मंत्रालय स्रोत ने अभी तक ये सूचना, आधिकारिक सूचना नहीं दे पा रही है कि क्या कितने लोगों की आहत हुई है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, लापता है। सुरक्षा कर्मी प्रहरी भी लापता है, पर्यटक भी लापता है।
7: The government many times, several times, talked about resiliency, talked about investing in more infrastructures which are climate adaptive and resilient. But somewhere they limited, got limited in the papers only. They were not actually implemented in the ground. And this is clearly because of the reason that even the Nepal government has not enough resources from its GDP to invest in such kinds of intervention. And this is also a matter of justice, and Nepal government is also not being able to get the public, the multilateral funds to be invested.
8: The situation is very alarming. Since the event happened, there has been a lot of response from the government side, but the problem is the scale of devastation is so huge that the existing response mechanism and response capacities are not being able to fulfill the demand, the extent of damage and loss. And what currently the government of Nepal and the related stakeholder are doing is trying to, first, because when the incident happens, the first priority is to save the lives. So for that reason, we have the response window where we're trying the government along with other stakeholder and local security forces, local government, and all the stakeholders are trying to look.
0: Well, more than 105 Indians are missing in Nepal after the flash floods yesterday. The Ministry of External Affairs is now in touch with various state governments. As to reports, 57 pilgrims from Tamil Nadu were affected by the flash floods. They were en route to Tibet. Now the government is also trying to establish contact with them. Meanwhile, 32 people from Kolkata on a Kailash Mansarovar tour also went missing, while 6 pilgrims from Durgapur were also missing. Isha Foundation-led Kailash group was reportedly caught in the flash floods, with Sadhguru even confirming the status of 77 pilgrims being unknown, with no official confirmation on their whereabouts. Sadhguru also said that the foundation is ready for rescue and support amid the tragedy.
9: So what is the current update as far as

0: Let me now take you through the top story of the hour. The Himalayan flood fury has left a trail of death and destruction all across Nepal. The death toll has now touched even 100. Over 60 people have also been reported to be injured and are now receiving treatment in different hospitals of the country. Satellite images now show staggering scale of devastation, buildings and bridges even swept away, entire areas transformed by the raging waters. On your screens are the before and after visuals, the satellite visuals from the flood hit areas. But the rescue mission is now in full swing. The Nepal Army, the police and the armed police force are now on ground with more than 250 civilians already rescued and the search for those missing still continuing. Remember that NDTV is the only channel on Ground Zero bringing you the latest visuals and updates from the heart of the disaster. From washed away bridges to submerged towns, our reporters are tracking the devastation and the rescue efforts. Take a look at this report filed by my colleague Sikta Deo.
1: Ground Zero, we are at Nuwakot area of Nepal where the flash floods have hit and damaged and destructed this entire area. You can see a section of people who have taken some rescue on top of some buildings there. Since morning, they have been waiting for relief and rescue personnel to reach them. A few of them we spoke to said they haven't had a sip of water since morning. A massive destruction. You can see the vehicles here submerged totally in destruction which has come with the flash floods which has hit this area. Tibet border. This was the road which used to take the people, the locals, the tourists to the Tibet border. But after today's flash flood, the roads are submerged in silt. It has been continuously raining. The challenge for the army personnel is to reach the higher up mountains. Well, we are at Ground Zero and we can say on record that beyond this has been a challenge, not only for a media team like us to move ahead, but also for the rescue workers, the police personnel and the army. The helicopters are doing the sorties, but still it has been a challenge because the weather has not been conducive and it is continuously raining and it is dark now. So the rescue operations will have to resume tomorrow morning. And till then, the road to the Tibet border where the destruction has been manifold than this area will be coming out, and the ground reports from that area will be coming out tomorrow morning. We are at the Nuwakot district on the banks of Thrissuri River, and this is village Vidur where the destruction is evident from these pictures. And right now here we are with some locals who are trying to locate their known ones, the people from their family, their friends. Aapka naam aur aap kisko dhoondne ke liye aaye hain Kathmandu se?
2: इधर का हमारा वो जो घूम गया जो लोग है इधर उस लोग का ढूंढने के लिए आए, लेकिन कुछ नहीं खिलाफ पता चला.
1: फंसे हुए हैं आपके बारे में कोई जानकारी नहीं?
2: फंसे उन्हें उन्हें जानकारी कुछ नहीं है.
1: Well, that's the biggest challenge right now. The moment we reached at this Ground Zero, it has been continuously raining. The challenge here is to reach the higher mountains, the higher reaches of the villages where the destruction will be much more than what we are seeing here.
3: हम इस वक्त नेपाल के नुवाकोट जिले में मौजूद हैं और हम रुके थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और हम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि हम जब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं तो कुछ और रिपोर्ट्स हम आप तक पहुँचाएं. तो इस बीच हमें मिले हैं सौरव और सलीना जो यहाँ पर हमारे साथ रुके हुए थे, और हम जब इनसे बात की तो हमें पता चला कि सौरव और सलीना वो शख्स हैं जो आज इस इलाके में आए सैलाब के पीड़ित परिवारों में से हैं. इन्होंने अपनों को खोया है नदी के उस पार, त्रिशूली नदी के उस पार. परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं, ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं. इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गई. करीना कह रही थी जो कपड़े इन्होंने पहने हुए यही है इनके पास अब, और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह, वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है। सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ, और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए इस इलाके के। ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा। आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग बच निकले। क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
4: उस समय तो मैं सो रहा था, तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे, तो नया पुल अभी बना हुआ है, वहाँ पे पहुंचे तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था, वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सही पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया।
3: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
4: रिकॉर्ड किया हूँ, लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये
3: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया, गाँव के गाँव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए, और इस तरह से तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। लीना, ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
5: पहली बार
3: आपने देखा। आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है, ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है, कैसे आप लोगों ने क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?
5: डर लगा कि बाँच दिन होला जस्तो लगा थियो, अनि मेरो पछि पछि आयो बाढी से
3: भाग भाग के आप लोग,
5: मेरे पीछे पीछे था बाढी,
3: बाढ़ का पानी आपके पीछे पीछे था, आप आगे आगे भाग रहे
4: थे। थोड़ी सी देर होता था हम लोग को बाहर ले जाता है, हम लोग के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था, वो बाहर ले गए,
3: सब भाग रहे थे।
4: हाँ, सब भाग रहे थे, हम लोग के पीछे एक दो तीन लगभग चार आदमी बाहर ले गए,
5: हमारे पीछे जितने भी लोग थे सबको भगा
4: ले, और ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए, इसलिए थोड़ा से
3: वैसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था, आप लोग भाग रहे थे, अभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए, तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा। और आप लोगों खुश नसीब लोगों में हैं जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है, और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे। वहां पर कुछ जानकारी अपने परिवार से बात हो पा रही है?
4: परिवार से कॉन्टेक्ट हुआ है, उन लोग अभी सेफ है, तभी लेकिन अभी
3: भी फोन पे ला पाए, अपने माता पिता से बात कर पाए?
4: अभी तो नहीं लग रहा है, अभी
3: नहीं लग रहा,
4: अभी कांटेक्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं है।
3: अब हिम्मत करनी होगी, कल एक नई सुबह है और अपनों के पास आप लोगों को पहुंचना है, और ये कोशिश कल आप लोग करेंगे जैसे कि आप लोग बता रहे हैं।
4: पहले फैमिली के पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर न्यूज स्टार्टअप जीरो से उठ के आएगा, तो जीरो में ही स्टार्ट किया जाएगा। अभी इधर से देखा जाए कुछ मदर उदर होता है,
3: आप दोनों के हौसले को सलाम, उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार जो इस वक्त उस पार फंसा हुआ है वो सलामत है, और आप लोग कल उनसे जल्द से जल्द मिलें, यही शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। शुक्रिया। द सिल्ट हियर हैज सबमर्ज्ड ईच एंड एवरी बिल्डिंग एंड द रिमेन्स लुक लाइक दिस। Well, we are here at a government premises which we used to take care of the cows and the buffaloes here. It was an animal welfare center which is now submerged in silt, like you can see here. The rescue team is here. When we spoke to them, they said we have no idea how much damage or destruction this flash flood has managed to create in this area. They have been rushed from Kathmandu, and they are still awaiting orders and the silt levels to dry up a little. And overhead we can hear the army helicopters, choppers doing the rounds to keep an eye if there are any survivors up there in the mountains from where the flash flood started, if they can be rescued. The weather is not so good, and the rescue operation is the biggest challenge, the weather here, for the rescue operation.
6: ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो नेपाल के उत्तरी जिला में, ये रसुआ नाम से जाना जाता है, रसुआ, नुआकोट, धादिंग, गोरखा, ये चार पांच जिला बहुत ही प्रभावित है। और जो हमारे सरकारी और संचार माध्यम से जो जानकारी मिली है उसमें यही है कि वहां पर तिब्बत के बॉर्डर पर कोई जो ये हिमताल फूट गया है, दूसरे लोग कहते हैं कि बाढ़ आया है, और लगभग लगभग अभी भी लोगों का कहना है कि 4-5 हजार लोग लापता है। लापता का मतलब है कि कन्फर्म नहीं, सरकारी गृह मंत्रालय स्रोत अभी तक ये सूचना, आधिकारिक सूचना नहीं दे पा रही है कि क्या कितने लोगों की आहत हुई है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, लापता है। सुरक्षा कर्मी प्रहरी भी लापता है, पर्यटक भी लापता है।
7: द गवर्नमेंट मेनी टाइम्स सेवरल टाइम्स टॉक्ड अबाउट रेजिलियंसी, टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टिंग इन मोर infrastructures which are climate adaptive and resilient, but they somewhere they limited, they get got limited in the papers only. They were not actually implemented in the ground, and this is clearly because of the reason that even the Nepal government has not enough resources from its GDP to invest in such kinds of intervention, and this is also a matter of justice, and Nepal government is also not being able to get the public, the multilateral funds to be invested.
8: The situation is very alarming. Since the event happened, there has been a lot of response from the government side, but the problem is the scale of devastation is so huge that the existing response mechanism and response capacities are not being able to fulfill the demand, the extent of damage and loss. And what currently the government of Nepal and the related stakeholder are doing is trying to first, because when the incident happens, the first priority is to save the lives. So for that reason, we have the response window where we're trying the government along with other stakeholder and local security forces, local government, and all the stakeholders are trying to look.
0: Well, more than 105 Indians are missing in Nepal after the flash floods yesterday. The Ministry of External Affairs is now in touch with various state governments. As to reports, 57 pilgrims from Tamil Nadu were affected by the flash floods. They were en route to Tibet. Now the government is also trying to establish contact with them. Meanwhile, 32 people from Kolkata on a Kailash Mansarovar tour also went missing, while 6 pilgrims from Durgapur were also missing. Isha Foundation-led Kailash group was reportedly caught in the flash floods, with Sadhguru even confirming the status of 77 pilgrims being unknown, with no official confirmation on their whereabouts. Sadhguru also said that the foundation is ready for rescue and support amid the tragedy.
9: So what is the current update as far as the flash floods is going?
10: So

0: water since morning. A massive destruction. You can see the vehicles here submerged totally in destruction, which has come with the flash floods, which has hit this area. Tibet border. This was the road which used to take the people, the locals, the tourists to the Tibet border. But after today's flash flood, the roads are submerged in silt. It has been continuously raining. The challenge for the army personnel is to reach the higher up mountains. Well, we are at ground zero and we can say on record that beyond this has been a challenge, not only for a media team like us to move ahead, but also for the rescue workers, the police personnel and the army. The helicopters are doing their sorties, but still, it has been a challenge because the weather has not been conducive and it is continuously raining and it is dark now. So the rescue operations will have to resume tomorrow morning. And till then, the road to the Tibet border, where the destruction has been manifold than this area, will be coming out, and the ground reports from that area will be coming out tomorrow morning. We are at the Nuwakot district on the banks of Trishuri River, and this is village Vidur, where the destruction is evident from these pictures. And right now here we are with some locals who are trying to locate their known ones, the people from their family, their friends. Aapka naam aur aap kisko dhoondne ke liye aaye hain Kathmandu se?
1: ये इधर का हमारा वो जो घूम गया जो लोग है इधर, वो लोग का ढूंढने के लिए आए, लेकिन कुछ कुछ नहीं फिर पता चला।
0: फंसे हुए हैं आपके बारे में कोई जानकारी नहीं?
1: फंसे उन्हें उन्हें जानकारी कुछ नहीं है।
0: Well, that's the biggest challenge right now. At the moment we reached at this ground zero, it has been continuously raining. The challenge here is to reach the higher mountains, the higher reaches of the villages, where the destruction will be much more than what we are seeing here. हम इस वक्त नेपाल के नुवाकोट जिले में मौजूद हैं और हम रुके थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और हम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि हम जब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं तो कुछ और रिपोर्ट्स हम आप तक पहुँचाएं। तो इस बीच हमें मिले हैं सौरभ और सलीना, जो यहाँ पर हमारे साथ रुके हुए थे, और हम जब इनसे बात की तो हमें पता चला कि सौरभ और सलीना दो शख्स हैं जो आज इस इलाके में आए सैलाब के पीड़ित परिवारों में से हैं। इन्होंने अपनों को खोया है नदी के उस पार, त्रिशूली नदी के उस पार। परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं, ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं। इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गई। करीना कह रही थी जो कपड़े इन्होंने पहने हुए यही है इनके पास अब, और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह, वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है। सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ, और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए इस इलाके के। ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा। आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोग बच निकले, क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
2: उस समय तो मैं सो रहा था, तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे, तो नया पुल अभी बना हुआ है, वहां पे पहुंचे तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था, वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सही पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया।
0: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
2: रिकॉर्ड किया हूँ, लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये
0: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया, गाँव के गाँव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए, और इस तरह से तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
3: पहली बार
0: आपने देखा? आप
3: क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है, ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, फिर लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है, कैसे आप लोगों ने क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?
4: नेपाल बोली
3: और
4: डर लगा कि बाँच दिन होला, अनि मेरो पछि पछि आयो बाढी चाहिँ,
3: भाग भाग के आप लोग,
4: मेरे पीछे पीछे था बाढी,
3: बाढ़ का पानी आपके पीछे पीछे था और आप आगे आगे भाग रहे थे,
2: थोड़ी सी देर होता था हम लोग को बाहर ले जाता है, हम लोग के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था वो बाहर ले,
3: सब भाग रहे थे,
2: सब भाग रहे थे, हम लोग के पीछे एक दो तीन लगभग चार आदमी बाहर ले,
4: हमारे पीछे जितने भी लोग थे सबको
2: भगा ले, ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए इसलिए थोड़ा से
3: वैसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था और आप लोग भाग रहे थे, अभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए, तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा, और आप लोगों खुश नसीब लोगों में है जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं, अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे, वहां पर कुछ जानकारी अपने परिवार से बात हो पा रही है?
2: परिवार से कॉन्टेक्ट हुआ है, उन लोग सेफ है तभी, लेकिन अभी
3: भी फोन मिला पाए अपने माता पिता से बात कर पाए?
2: अभी तो नहीं लग रहा है, अभी कांटेक्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं
3: है, अब हिम्मत करनी होगी, कल एक नई सुबह है और अपनों के पास आप लोगों को पहुंचना है और ये कोशिश कल आप लोग करेंगे, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं
2: पहले फैमिली के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर न्यूज़ स्टार्ट अप, जीरो से उठ के आएगा तो जीरो में ही स्टार्ट किया जाएगा, अभी इधर से देखा जाए कुछ मदद उदर होता है था
3: आप दोनों के हौसले को सलाम, उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार जो इस वक्त उस पार फंसा हुआ है वो सलामत है और आप लोग कल जल्द से जल्द मिले, यही शुभकामनाएं आप दोनों के लिए, सौरभ करीना शुक्रिया।
5: ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो नेपाल के उत्तरी जिला में, ये रसुआ नाम से जाना जाता है, रसुआ नुआकोट धादिंग गोरखा, ये चार पांच जिला बहुत ही प्रभावित है और जो हमारे सरकारी और संचार माध्यम से जो जानकारी मिली है उसमें यही है कि वहां पर तिब्बत के बॉर्डर पर कोई जो ये हिमताल फूट गया है, दूसरे लोग कहते हैं कि बाढ़ आया है और लगभग अभी भी लोगों का कहना है कि 4-5 हजार लोग लापता है, लापता का मतलब है कि कन्फर्म नहीं, सरकारी गृह मंत्रालय स्रोत अभी तक सूचना आधिकारिक सूचना नहीं दे पा रही है कि क्या कितने लोगों की आहत हुई है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, लापता है सुरक्षा कर्मी प्रहरी भी लापता है, पर्यटक भी लापता है।
6: द गवर्नमेंट मेनी टाइम्स सेवरल टाइम्स टॉक्ड अबाउट रेजिलियंसी, टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टिंग इन मोर infrastructures which are climate adaptive and resilient, but somewhere they limited, got limited in the papers only, they were not actually implemented in the ground, and this is clearly because of the reason that even the Nepal government has not enough resources from its GDP to invest in such kinds of intervention, and this is also a matter of justice, and Nepal government is also not being able to get the multilateral funds to be invested.
7: Well, my colleague Rishabh now joins us on the broadcast to bring us the updates. Rishabh, of course, we're seeing there's a massive scale of devastation that is now unfolding all across Nepal. Help us understand, where do the rescue and relief operations stand at this hour?
8: If you can just come up with the last line, I missed your last line.
7: Right, I was saying that, Rishabh, if you could just walk our viewers through the details of where does the situation currently stand, especially with regards to rescue and relief.
8: Well, see, the Nepal authorities in the last 22 hours have been on it, and overnight as well, as a colleague there was reporting from Kathmandu suggested overnight also the rescue operations are on. But we also need to understand the issues with the rescue operation. We're not talking about a plain area. These are mountainous regions, especially when it comes to Chitwan or Gorkha area. These are very difficult mountainous terrain, and in this area rescue operations is not only a challenge, it becomes a challenge more with the topography of the area. But the Nepalese authority, be it Nepali Army company, be it Nepalese disaster and rescue management team or other local authorities, they have been around the clock trying to ensure that they rescue many people.

0: electricity bill paid.
1: Really?
0: Your mobile recharge is done.
1: How?
0: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.
2: देश का टायर जेके टायर
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: new rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
1: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमैन बनना नहीं आसान है.
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड.
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन.
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ. यूज भीम ऐप टू पे.
3: इट्स द माही वे.
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात.
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
7: अरे मेरे राजा.

0: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
1: Optoroma, manual winding. चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात
4: वाओ मामा क्या स्वाद है
5: अरे मेरे राजा

0: Thank you very much, Rahul. Well, before we get the day started, and we would like to thank everyone who has made this inaugural edition of NDTV World Anviksha possible here in Kathmandu, Nepal. NDTV World Anviksha, Ideas Across Borders, the Nepal-India Dialogue, is presented by Patanjali Dant Kanti, co-presented by the MAV Group, powered by PhonePay and Asian Paints Nepal.
1: कार्यक्रम के लिए हम धन्यवाद करते हैं एजुकेशन पार्टनर पारुल यूनिवर्सिटी, न्यूट्रिशन पार्टनर सुधा, एसोसिएट पार्टनर्स गोल्ड स्टार शूज, पंचकन्या ग्रुप, पद्मज्योति ग्रुप, बैंकिंग पार्टनर नेपाल एसबीआई, मीडिया पार्टनर कांतिपुर मीडिया ग्रुप। अपने अगले सेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आरती और मसाला।
4: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ गागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, large

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।

0: न्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज। He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: This question is to the government rescue team. They can answer correctly. But from my side, we are managing the doctors who are needed in the rescue. Government asked us to, there are some doctors like orthopedics or paramedics or something, surgeon or general practice needed. Then we send our doctors to the site of the floor site, yeah?
1: Okay.
0: And so, so that I cannot say exactly how many international...
1: So as of now, can you confirm the current scale of the medical response, as in how many doctors or nurses or support staff are deployed?
0: Most of the doctors, our doctors are in the site. Yeah, there is a district hospital and we are in touch with doctors.
1: Okay.
0: They are doing their service.
1: Okay.
0: And some doctors are going from the early service and some doctors are going from the route. Though road is not, road is also damaged and the road is not good. But our friends, doctors are going through by route and also from the early service. And they are doing basic life-saving procedures and they are referring the patient in the tertiary center, like trauma center, teaching hospital with early lead. And we are doing, yeah.
1: So how are medical teams coordinating with the Nepal Army Police, Armed Police Forces and helicopter operations for search, rescue?
0: Yeah, this is the mainly from the Health Ministry and the Home Ministry, yeah?
1: Yes.
0: They are doing the coordination and we are also the, some part of that coordination. And can also, you ask to the Health Secretary. Yeah.
1: Yes.
0: Yeah.
1: So, last question.
0: Okay.
1: What types of injuries or medical conditions are you seeing most frequently among those rescued so far, and how are they being prioritized and treated?
0: And most of the patients are drowning. Yeah.
2: All right. Let's now go across to where the Prime Minister is addressing India's youth.
3: उस शहर को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। आज के इस कार्यक्रम में देश के जिन सैकड़ों जिलों के खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, हर जिले में दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पर चमकने की ताकत है। इस ताकत को समझते हुए ही हमें इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने खेलों से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ भी देश का ध्यान दिलाया है। ये चुनौती ओलंपिक्स से जुड़ी है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती। यानी मेडल टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो हम कम्पीट ही नहीं करते। और दशकों से ऐसा ही चला रहा है। 2012 के ओलंपिक्स में उस समय भारत ने सिर्फ 2012 में सिर्फ 13 खेलों में हिस्सा लिया था। 20 से ज्यादा खेलों में तो भारत की भागीदारी ही नहीं थी और इन 20 से ज्यादा खेलों में कई सारे खेल ऐसे हैं जिनका नाम तक देश में लोगों ने शायद ही सुना हो। दुनिया के दूसरे देश उन खेलों में मेडल जीतते हैं और हाँ

हम उनमें हिस्सा ही नहीं लेते। हमें मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी महारत हासिल करनी ही होगी। अब जैसे सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, इतना बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है जहां इस प्रकार के स्पोर्ट्स के लिए एक स्वाभाविक रुचि हो सकती है। हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स से लेकर विंटर स्पोर्ट्स तक के लिए डेमोग्राफी भी है और जियोग्राफी भी है, लेकिन फिर भी हम ऐसे खेलों में दुनिया में कहीं दिखते ही नहीं हैं। इसलिए हमें अलग अलग जिलों में ऐसी संभावनाओं को तलाशना होगा जहां किसी एक खास स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम विकसित हो सके, और इसमें आज के इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। और मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए, सरकार उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले। हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी स्पोर्ट्स साइंस, ट्रेनिंग, कोचिंग और अनुभव साझा करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये आयोजन भी इसका उदाहरण है। खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसे संवाद का मंच है जिसका एक एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सकता है। और इसके साथ जो युवा संवाद हो रहा है, वो कार्यक्रम आपके आइडियाज और एस्पिरेशंस को
देश के सपनों से।

से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट, गवर्नेंस और विकसित भारत को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए, नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं एक स्वस्थ समाज के लिए, एक अच्छी पारिवारिक व्यवस्था के लिए, एक बेहतर कार्य संस्कृति के लिए स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट बहुत जरूरी होती है। और ये स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट खेल के मैदान में गए बिना सीखनी बहुत मुश्किल होती है। खेल हमें केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कंपटीटर बनाना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, स्पोर्ट्स ये जज्बा हमारे भीतर लाता है। साथियों, खेलों से जीवन कैसे बदलता है, इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे पैरा एथलीट्स हैं। पैरा एथलीट्स को जब कोई मैदान में देखता है तो जीवन के बारे में सोचने का नजरिया बदल ही जाता है। और जब वो कुछ अचीव करता है तो उस एथलीट के साथ ही उसके पूरे परिवार को नई जिंदगी मिल जाती है। वो माँ बाप, भाई बहन जो अपने उस बच्चे को शुरुआती दिनों में संघर्ष करते देखते हैं, उनके लिए उस दिव्यांग खिलाड़ी की सफलता उनके सपनों को, उनके हौसलों को भी एक नई ऊंचाई दे देती है। साथियों, मैं खुद ऐसे प्लेयर से हमेशा इंस्पायर होता रहा हूं। अब जैसे आपने सबने नाम जो सुने हैं, आर्चरी में हमारी एक बेटी एक कमाल की खिलाड़ी है, नाम जानते हैं आप, शीतल। जब पैरालंपिक में उन्होंने मेडल जीता तो पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। ऐसे ही हमारी एक और बेटी अवनी लेखरा है, जिन्होंने दो दो बार पैरालंपिक के मेडल जीते। मैं जब भी बेटी अवनी से मिलता हूं बहुत गर्व महसूस करता हूं। सुमित अंतिल हो, नितेश कुमार हो, और अभी अभी तो आपने नाम सुना होगा हमारे झंडू कुमार, ऐसे हमारे पैरा एथलीट्स हैं। ऐसे हर साथी हमें भी प्रेरित करते हैं। साथियों, स्पोर्ट्स एक बेहतर जीवन की गारंटी है। स्पोर्ट्स हमें बेहतर जीवन जीने के लिए फिट बनाता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करता है। हम सभी फौजा सिंह जी के बारे में जानते हैं। पिछले वर्ष 100 वर्ष से ज्यादा की आयु में

फौजा सिंह जी का निधन हुआ है। खेल के प्रति प्यार हो, फिटनेस हो, तो ये कैसे जीवन पर्यंत चलता है, फौजा सिंह जी इसकी मिसाल थे। उनका जीवन इस बात की बहुत बड़ी प्रेरणा है कि कैसे स्पोर्ट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपस में जुड़े हुए हैं। साथियों, स्पोर्ट्स का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, जो असली खिलाड़ी होते हैं उनमें ड्रग्स, नशे से दूर रहने की इच्छा शक्ति भी पैदा हो जाती है। आज जब नशे की इतनी बड़ी चुनौती युवाओं के सामने है, तो स्पोर्ट्स इसमें भी बहुत सार्थक भूमिका निभाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत में स्पोर्ट्स एक बेहतरीन प्रोफेशन के तौर पर उभरा है। समाज में स्पोर्ट्स को लेकर नजरिया बदला है। आज आप देखिए, हमारे देश में लोग ट्रायथलॉन में हिस्सा ले रहे हैं, 5K और 10K रेसेस दौड़ रहे हैं, यार दोस्त मिलकर हाई रॉक्स जैसे चैलेंजेस को पूरा कर रहे हैं, कोई पहली बार शीर्षासन करने की खुशी मना रहा है, तो कोई दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर पीकल बॉल और बैडमिंटन खेल रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इसको एक बड़े नजरिए से देखें, तो इसमें बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। चेंज ये कि स्पोर्ट्स अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। अगर पढ़ाई और कैरियर का टाइम टेबल बन रहा है, तो दिन भर के रूटीन में स्पोर्ट्स को भी जगह मिल रही है। और यही चेंज है, यही परिवर्तन है जिसके कारण भारत के स्पोर्ट्स फ्यूचर पर भरोसा भी बढ़ रहा है। साथियों, देश में स्पोर्ट्स कल्चर तभी बनता है जब सामान्य मानवीय से जुड़े, जब स्कूल्स स्पोर्ट्स के पीरियड को को-करिकुलर नहीं जीवन का हिस्सा माने। जब ऐसा होता है, तो इससे टैलेंट पूल भी बढ़ता है और स्पोर्ट्स को करियर मानने वाले बच्चों को उनकी फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स की अहमियत है, प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड की अहमियत है। और ये तभी होगा जब आप सब युवा साथी इस अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, मुझे भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य और उसकी सफलता पर बहुत भरोसा है। मैं देश के हर युवा से कहना चाहता हूं, खेल के मैदान में हो या समाज के बीच, आपकी भागीदारी ही भारत की शक्ति है। आपको खेल से प्यार है, तो इससे जुड़ने के अनेक माध्यम बन रहे हैं। अब नए नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रेनिंग और कोचिंग के तरीके बदल गए हैं, खेलों के आयोजन की, उसकी प्रतिस्पर्धा की, उसकी विधाओं की जरूरतें बदल गई हैं। इक्विपमेंट डिजाइन है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी, एनालिटिक्स, ऐसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। आपको ये अवसर
छोड़ना नहीं है, इसलिए इस संवाद में खुलकर

0: मलाबार दुनिया के सबसे बड़े ज्वेलर्स में से एक होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर।
1: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
2: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस। What we are sitting inside is a Joby powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: देखिए, नेविगेट मी टू द नेशनल आर्चरी क्लब। What time is the medal ceremony?
5: The medal ceremony begins at 6:30 p.m.
6: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
7: Kia. Movement that inspires.

0: claiming she was intoxicated. The incident was captured on camera and is now going viral across social media.
1: Maar doge tujhe jaan se. जूता साफ करवाऊंगी तुझसे। अखिलेश यादव का कहाँ भैया? अखिलेश यादव बहुत गंदे लोग हैं। करते हैं चेंज करके। अभी लोगों में चेंज करते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है। दोबारा 906 से पंगा लिया। तोड़ दूंगी तुझे। तेरा मुंह पे यही चप्पल मारोगे। ओए, तूने जीवन में मेरी जैसी औरत नहीं देखी। तेरी उतार बुला। बीजेपी से तेरे मुंह पे चप्पल फड़वाऊंगी। चप्पल और साथ मेरे गरीब की औलाद। दो रोटी नहीं है तेरे जेब में। मार दूंगी तुझे।
0: Well, along with being intoxicated by alcohol, this woman on your screen that you just saw was clearly intoxicated by misplaced power. On that note, we slip into a short break. News and updates will continue here on NDTV. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: voices refusing to wait their turn. India is changing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज

0: पांच समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावे चीनी, चूंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहां भी कई एक लोग हैं जो वहां पर अभी, चूंकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहां पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहां के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहां से निकाला जाए। इसमें से 200 लोग जो है, उसमें से 95 लोग दारचिन शहर की तरफ, वहां से हिल्सा पार करके नेपाल में आने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लोग जिलोंग शहर में, 30 लोग जुटुलपुक जो कि सा की तरफ आ रहे हैं, एक और शहर।
1: Rest of areas, those will be solved by a special mechanism which will be comprised by 2 foreign secretaries.
2: But did it result in souring relationship with India at that time? Could have been avoided, or do you stand by it?
1: Yes, we still expect that.

0: All right, it's a day after the devastating flash flood there in Nepal. Let's get you all the details, all the information.
1: The BRICS Disaster Risk Reduction Group just 1 month ago came out with a statement proposing or endorsing guidelines for an early warning data system. Obviously, such a system would include China and India. Is there any such system yet? Is there an organized way of sharing emergency data between these countries?
2: So, Alex, I don't have an update for you on this, but I shall come back to you on this particular point. Sarjana ji.
3: नमस्कार सर, मैं सर्जना शर्मा हूँ सनमार्ग से. हुगली से सर 24 अगस्त को एक टूरिस्ट बस गई थी जिसमें 65 टूरिस्ट थे. नेपाल गई थी और उसी एरिया में जहाँ ये हादसा हुआ है. आपने बताया कि 32 लापता हैं वहाँ से, तो बाकी जो 65 में से जो बाकी हैं क्या उनका कुछ वेयर अबाउट या उनकी जानकारी है क्या कोई?
2: देखिए, बहुत सारे लोग जो गए हैं वहाँ ना, कुछ लोग उस तरफ चले गए हैं. अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम लोग एक तरीके से उसको छानबीन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन से लोग किस नाम से कौन कहां पर है. ये 32 लोगों का तो हमने जानकारी दिया, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और अन्य लोगों से उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है. तो लेकिन ये जो 32 या 33 लोगों की बात आपने कही उसके बारे में मैं आपसे जब मेरे पास कोई अपडेट होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा, तो मैं आपसे साझा करूंगा. लेकिन ये कहने के लिए कि ये जो 32 लोग, हमने बंगाल से बात करी, 32 लोगों की बात कर रहे हैं जो कि सम्राट ट्रैवल के माध्यम से वहां गए थे. आई थिंक वी कैन बंच बिकॉज ऑल द क्वेश्चन आर द सेम. कलोल
4: भट्टाचार्य फ्रॉम द हिंदू. सर, गिवन द फैक्ट दैट इज द ट्रेजेडी इज ऑलमोस्ट ऑफ साउथ एशियन प्रोपोर्शन, सो इज देयर अ कोऑपरेशन एट द SAARC और एट द BIMSTEC लेवल टू डील विद दिस डिजास्टर?
2: सो एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर एक्सटेंडिंग बायलैटरल असिस्टेंस टू नेपाल एंड द डिटेल्स ऑफ दैट वी हैव शेयर्ड विद यू.
5: जस्ट टू ऐड, are we also giving some satellite assistance to Nepal?
2: Whatever request has been made by Nepal, we are acting on that. And as and when we have more request for us to consider, we will take it forward. Shailesh.
6: Good afternoon, sir. Shailesh from National Defense. Though this tragedy has struck and it would be very unfortunate to ask, but since there could be many diseased, so are we going to do some medical evaluation, like taking the DNA samples of the relatives, so to ascertain the identities of the victims? What are we doing in this regard, sir?
2: So we, as you'd seen in our humanitarian assistance, we have supplied medicines, and if there is any further request, we will look into it.
7: सर, नेपाल से जो बाढ़ के बाद पानी भारत की तरफ आ रहा है, उसमें उसका भारत के हिस्से पर क्या असर अभी देखा जा रहा है, क्या मतलब क्या अलर्ट है इसमें?
2: मैंने ही देखा है कि न्यूज़ में कि जो राज्य हैं, जो गंडक नदी, त्रिशूली गंडक कहलाता है बिहार में, और सीमावर्ती जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ पर देखा गया है कि लोगों को अलर्ट किया गया है. तो आगे जैसे जैसे हम लोग के पास और खबरें आएंगी, वो आपसे साझा करेंगे. और राज्य में जो हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, जो उनका सूचना विभाग है, वो भी आपसे साझा करता रहेगा. इफ आई होप यू विल सी द लिस्ट ऑफ द 21 पीपल हु हैव बीन रेस्क्यूड फ्रॉम तमिलनाडु, दे दोज नेम्स हैव बीन पुट ऑन द एक्स पोस्ट, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट. बोथ क्वेश्चंस, यस.
8: So my name is Ashish from Kyolo News. Do you have information about nationals of other countries who may be stranded in Nepal? And has any foreign government approached India for assistance? And is India prepared to assist in evacuating third country national as part of his humanitarian operation?
2: Anjukala.
9: Chandrakala, Republic TV. My question is regarding what kind of assistance has been provided to the affected families by the Nepal government? Any kind of coordination happening?
2: So on your question, I mean, what the government of Nepal chooses to do, it is for them to answer. Our focus is as to how we can extend a helping hand to our Indian nationals who are stranded there, and at the same time offer humanitarian support to the government of Nepal. Ashish, on your question, we understand that there are some foreign nationals who have also been impacted. Some foreign nationals may be of Indian origin. Some of them have

0: జరగలేదు. ప్రమాదాలు అన్నది చెప్పి రావు, కాకపోయినా మేము కూడా ఇప్పుడు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని మేము సేఫ్గా వస్తామని తెలియజేస్తూ మీ బంధువులందరూ కూడా మీ ముందర చూపిస్తున్నాం అండి. జై శ్రీరామ్.
1: 20 తారీఖ్ కో గే థే, షూటింగ్ కర్నే కే లియే గే థే, అభి ఇస్ విపర్జయ కే లియే అటక్ గే హై. తో ఆప్ లోగ్ కో భీ జో ఖబర్ హై, ముజే భీ వహీ ఖబర్ హై. హమ్ లోగ్ ఉమీద్ కర్తే హై కి వో ఠీక్ హీ హై, అచ్చే హై. ఉన్కే
2: కోయీ సంపర్క్ హో పాయా ఆప్సే ఉన్ లోగో కా?
1: मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन उनके बेटे के साथ हुआ है, तो वो ठीक है.
2: क्या बताया, उन्होंने फंसे हुए हैं,
1: आने के लिए रास्ता उस्ता सब बंद है, तो इसीलिए वो लोग आएंगे, लेकिन अभी ठीक ठाक है.
2: और उनके साथ और कौन कौन थे?
1: उनकी मिसेज गई थी प्रतिभा मुखर्जी, और वो हमारे घर से गए थे, और बाकी शूटिंग के और अभिनेता अभिनेत्री सब कोई है.
2: वो भी सब कोलकाता के ही है?
1: शायद.
3: दंपति गया था 21 तारीख मिथिला एक्सप्रेस से, वो रक्सल होकर काठमांडू गया था. उधर से 2 दिन रहने के बाद वो लोग प्रसिद्ध किया मानस सरोवर कैलाश के जाने के लिए. उसका एम ही था वो मानस सरोवर कैलाश जाने के लिए. तो वो 2 दिन उधर रहने के बाद वो तो लास्ट जो हमको खबर मिली थी वो जो हुआ था, जो अभी जो डिजास्टर जो हुआ था, उसके पहला दिन वो जिधर रहने था उधर तक 10:30 बजे तक कंफर्म मिला था जो वो ठीक है यार. लेकिन वो दिन सुबह से वो इमिग्रेशन लेकर जाना चाहिए था वो ये में हमारा वही कैलाश मानस कैलाश जाने के लिए.
2: अच्छा.
3: हम लोग कब सोचते हैं जो उसी टाइम 8:30 तक वो लोग इमिग्रेशन काउंटर में ही था. इमिग्रेशन काउंटर में था जब 8:30 बजे तक वो डिजास्टर उधर हुआ था.
4: शी वॉज बीन विद दिस यात्रा ट्रैवल, शी हैड डन मेनी दिस पिलग्रिम्स ट्रैवल्स विद दिस सुपर यात्रा, एंड शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस कैलाश यात्रा. And even she contacted me on the same day, yesterday morning, before she left the hotel. And she said she was fine, and they started the trip. But unfortunately, around midday, we came to know that their bus was missing, and no other information we are receiving till now.
5: लोग कैलाश गए मानसरोवर, चलो जाए के साथ गए थे, ट्रैवल्स के साथ. तो कल से कोई, आज सुबह से उन लोग को कोई बातचीत नहीं हो पा रहा है. तो चलो जाए से भी हम लोग फ़ोन किए थे हम लोग उन लोग से, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को तो आज सुबह कल रात बात किए थे, आज सुबह 8 बजे 8:05 तक बात किए हैं, तो उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है उन लोग से. सरकार से बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग कुछ मदद कीजिए. वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से बहुत कोई गए हैं, कैलकाटा से भी गए हैं, उन लोग को सुरक्षा देकर उन लोग को लौटाने की व्यवस्था कीजिए.
6: I spoke to my parents 7:30 a.m. their time. They were at that time in Saga. This was at the end of their Kailash Yatra. So they had already finished and they were about to leave Saga to come home. As far as I know, after that, they reached the border of Tibet and Nepal at about 9 a.m. Nepali local time, per the Isha Foundation. And they are last known to be at the Yirong Port border crossing office. As far as we know, the flood hit the port office just minutes or 10, 15 minutes after they had arrived there.
1: So at what point did you lose contact with your parents?
6: So a little bit before the flood hit, I have them both on Find My on my iPhone, and it showed me when we woke up this morning, we looked on there and it had basically said that for around 10 hours, their iPhones had not been seen or discoverable by the app.
1: Yeah.
7: All right. So many worried and distraught family members waiting for some news. We'll continue to track all the latest emerging from Nepal. For the moment, slipping into a short break.
8: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
9: Hey Kia, navigate me to the National Archery Club. What time is the medal ceremony?
10: The medal ceremony begins at 6:30 p.m.
11: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
12: Kia. Movement that inspires.
13: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
14: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
15: अरे मेरे राजा।

0: Within the hour, we informed all the embassies of these countries, both in India and Nepal, and we've been active in this, but there is really nothing much.
1: So there are many families in India who are anxiously waiting for some information about their loved ones who are now missing in Nepal. We spoke to some of those people, listening to what they had to say.
2: 20 तारीख को गए थे शूटिंग करने के लिए गए थे अभी इस विपर्जय के लिए अटक गए हैं तो आप लोग को भी जो खबर है मुझे भी वही खबर है हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो ठीक ही है अच्छे हैं उनके
3: कोई संपर्क हो पाया आपसे उन लोगों का
2: मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन उनके बेटे के साथ हुआ है तो वो ठीक है
3: क्या बताया उन्होंने फंसे हुए हैं
2: आने के लिए रास्ता उस्ता सब बंद है तो इसीलिए वो लोग आएंगे लेकिन अभी ठीक ठाक है
3: और उनके साथ और कौन कौन थे
2: उनकी मिसेस गई थी प्रतिभा मुखर्जी और वो हमारे घर से गए थे और बाकी शूटिंग के और अभिनेता अभिनेत्री सब कोई है
3: वो भी सब कोलकाता के ही है
2: शायद
4: সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছিল আমরা কালকেরই এটা জানতে পারি কালকে ফোন করেছিলাম ফোন করতে মানে কোনো যোগাযোগই হচ্ছে না আর তারপরে আমি ফেসবুক বা এতে দেখলাম যে নেপালে এরকম বান ডেকেছে দিদিটা রওনা হয়েছিল 21 তারিখ 22 তারিখে কাঠমান্ডু পৌঁছেছিল কারণ কালকে যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিল ওইখান থেকে দিদিদের কাল আরও ওপরে ওঠার কথা কিন্তু ঘটনা ঘটার পর থেকে আর মানে কোনো ট্রেসই করতে পারছি না যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করছি কোনোভাবেই যোগাযোগ করে উঠতে পারছি না
1: Right, so family members waiting anxiously for information of their loved ones. With that, we'll slip into a short break. More news coming up on the other side.
5: Rang rang rang rang rang rang rang gine re dekho kaise bhi ho din rang bana rahe
6: bojo paints rang bana rahe

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: How?
4: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way.

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा। सबका राजा आर्थर मसाला।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है।
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
4: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: बंधन पे इतना बवाल खड़ा कर दिया, क्यों? ऐसे कैसे पेट्रियार्की खत्म होगी?
1: नहीं पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि स्मैश द ब्राह्मिनिकल पेट्रियार्की था। राहुल जी को लगा कि चुनाव यूपी के नजदीक हैं तो ब्राह्मिनिकल हटा दिया, लेकिन इस देश में एक और स्मैश द ब्राह्मिनिकल पेट्रियार्की का प्लकार्ड लेकर खड़ा हुआ था, उसका नाम है जैक डोर्सी। आज कहाँ है जैक डोर्सी किसी को पता नहीं, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। वो स्मैश द ब्राह्मिनिकल पैट्रियार्की का प्लकार्ड लेकर खड़ा था और आज वो नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन कहाँ है किसी को पता नहीं। राहुल जी ने स्मैश द पैट्रियार्की किया है, पॉलिटिकली वो कहाँ होंगे ये आगे तय होगा। पहली बात तो ये कि इस एड को बनाने वालों को ये पता था कि हमें क्या करना है। नेशनल टेलीविजन पर विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी उनका बढ़िया से प्रचार हो रहा है, हम लोग डिबेट कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया क्योंकि वो खुद मान गए कि ऐड ठीक नहीं था।
0: तो फिर लोगों ने क्यों उनको प्रचार करने दिया बाय ऑब्जेक्टिंग टू इट?
1: मैं ये कह रहा हूं कि उनको अगर अगर वो ऐड सही था तो फिर तो उनको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब जिस कंपनी ने बनाया उसको खुद लग रहा है कि ऐड ठीक नहीं था। पहली बात तो ये, किसी महिला को क्या पहनना है कैसे पहनना है वो डिसाइड करना सिर्फ वो तय करे, कोई और तय नहीं कर सकता, ना उसके घर वाले, ना हम, ना कोई, ना सोसाइटी, कोई नहीं। लेकिन रक्षाबंधन पर क्या पहनना है और उसको विज्ञापन में इस तरह से प्रेजेंट करना है वो तो वो सोसाइटी तय करेगी जिसके इमोशन रक्षाबंधन के साथ जुड़े।
0: पर क्या इमोशन इससे हर्ट हो सकते हैं? क्या ये इमोशनली हर्ट किया था? मतलब महिलाएं तो सब कुछ पहनती है ना, अलग अलग तरह के ब्लाउजेस होते हैं, साड़ी होते हैं, ड्रेस होती है।
1: नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं,
0: कई बार देर से उठते हैं तो फिर मम्मी कहती है कि जो पहने हो उसी में कर लो।
1: लेकिन घर में आप कैसे पहन के कौन से कपड़े हैं, और भाई बहन क्या दोनों अगर सिबलिंग है तो कैसे रहते हैं, उनका अपना अलग ही एक मिजाज होता है। लेकिन क्या कोई एड जो बनाया जा रहा है वो ऐसे इसी तरह से कर दिया जाता है? उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है, उस क्रिएटिव टीम का जो क्रिएटिव फ्रीडम होता है उसमें वो सोचते नहीं। ये वेल डिजाइन था। जिस समय राहुल गांधी वो मनुस्मृति के संदर्भ लेकर आते हैं, जानबूझकर इसको इस तरह से कर रहा था कि ये रिएक्शन आएगा और हम बार बार हिंदुओं पर, हिंदू त्योहार पर, हिंदू आस्था पर हमला कर रहे हैं।
0: ओके, सो यू आर थिंकिंग दिस इज ऑल कनेक्टेड?
1: यस,
0: हु डज इट? दिस इज ऑल कनेक्टेड, द फैक्ट दैट दिस एडवर्टाइजमेंट कम्स आउट, दिस होल टॉकिंग अबाउट मनुस्मृति, इट्स ऑल कनेक्टेड।
1: कृति सैनन और कंगना रनौत दोनों बड़ी मेरी पसंदीदा अभिनेत्रियां हैं।
0: हु डज अरी वाला?
2: वेल फर्स्ट ऑफ आदाब, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बात से, एक शेर से अपनी बात शुरू करती हूँ। बराबरी की बात हो तो दरवाजे भी बराबर हों, बराबरी की बात हो तो दरवाजे भी बराबर हों, सिर्फ किरदार बदलने से कहानी नहीं बदलती। आप अलग अलग किरदारों में लोगों को डालते हैं और चाहते हैं कि एक आपका जो डिबेट है दैट स्पीक्स अबाउट पेट्रियार्की एंड अनदर वन दैट स्मैशेस इट, राइट? यू रिमेंबर इन अ पर्टिकुलर कॉन्क्लेव when Kriti Sanon was with you and I had asked a question. I mean, she's a lovely lady. Come on, let us understand that she's been in the industry for
0: a
2: while.
0: But being argued, this is not about Kriti Sanon.
2: It
0: is about what she was made to wear.
2: Right. And what she's wearing, she's got the complete right to wear. She's got the complete right to decide. And honestly, you're talking about Raksha Bandhan, a tehwar where brothers and sisters celebrated together. It is supposed to be about protection. So how is what she's wearing relevant to the protection that a brother can provide for her? In her case, the sister, because they tie each other Rakhi, as she's mentioned. So you're talking about smashing the patriarchy on one side, for which Rahul Gandhiji deserves 100% credit. This is not about going against Hinduism, not about going against any religious practice.
0: This is policing,
2: right?
0: What women wear.
2: Exactly.
0: Why should you police what women wear, including Kriti Sanon in tradition?
2: And also, just one more point. I have been once upon a time a fan of Kangana Ranaut movies. Not anymore. Not for the person that she's now become. It saddens me because we share the same curly hair. But that being said, yes, hidden under the hijab. That being said, at her times, we all remember how Kangana Ranaut has appeared in movies. Again, not policing against her, not speaking against her, but then...
0: So you're saying this is double standard? Don't police what women are wearing, Shantanu Gupta.
2: Absolutely. And a woman doing that on top of that, Shantanu even
1: Gupta.
2: More sad.
1: लेकिन ये बड़ी बात है कि हुदा जेरीवाला जी हिजाब में ये सब कह रही हैं।
2: बिल्कुल।
1: अच्छी बात है। अच्छी बात। ये moral policing नहीं होनी चाहिए।
0: No, but she's saying it's a choice.
1: हाँ, इसीलिए मैं कह रहा
0: हूँ। That is also a choice.
2: Absolutely is a choice. Absolutely.
0: So don't police what women wear. That is the real essence of patriarchy, Shantanu Gupta.
3: See, first of all, as Harshji said, it's a free advertisement for Jiva. I didn't even know the Jiva brand. I just asked some of the people which brand it is. They told it's a jewelry brand. So they are not even a religious brand, a Rakhi brand or a Tika brand or a religious Samagri brand, right? So very smartly use the Hindu festival,

0: वो 457 दिन बाहर रह चुका है सर, उसने जिसका रेप किया था वो भी किसी की बहन थी, तो क्या सर उस दिन हिंदू धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती? लेट मी कंप्लीट। इस देश में सर महिलाओं की क्या दुर्गति है, आप जिसको नौमी पे पूजते हो 7 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है सर, उस पे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती? सेकंड क्वेश्चन मैम, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट ऑफ ADR 151 आउट ऑफ 543 MPs, उनपे कहीं ना कहीं वुमेन से रिलेटेड केस है। 16 हैव द केसेस डायरेक्टली ऑफ रेप अगेंस्ट द वुमेन। इस देश भारत माता की मंदिर में वैसे लोग बैठे हुए हैं, वहां हिंदू धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती है? और कृति सनन के नेक लाइन से हिंदू धर्म की भावना
1: है। हर्षवर्धन जी, सिलेक्टिव सिलेक्टिव स्मैशिंग नहीं
2: होती। पहली बात तो ये कि कृति सनन की नेक लाइन से या उनके ब्रालेट पहनने से किसी को कोई एतराज नहीं। रक्षाबंधन पर आप ये करें और ये नॉनसेंस टाइप का डिबेट में आप लॉजिक लेकर आते हैं कि ADR के आंकड़े क्या हैं, रेप कहां हो रहा है, इससे कौन एतराज कर रहा है? आप दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हैं?
0: कितनी बुरी बात है कि हम वुमेन की बात कर रहे हैं, इज टेलिंग दैट इट इज नॉनसेंस टू
3: कंपैरिजन। कंपैरिजन इज नॉनसेंस, द कंपैरिजन इज
2: नो भाई।
1: अरे आप उनसे बात करो ना,
2: जोश में कम से कम जो बोल रहे हैं उसको समझो। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो।
0: ठीक है,
2: जब आप ये कह रहे हैं कि इस देश में रेप होते हैं, इस देश में जो सांसद हैं वो उनके ऊपर ढेर सारे चार्जेज हैं, निश्चित तौर पर उसको ठीक करने की जरूरत है। उनको हम ही लोग चुन के भेजते हैं, आप ही वोट देते हैं, हम ही वोट देते हैं।
4: देयर वाज अ लेकिन
2: पूरे डिबेट को उसी मंच पर राहुल गांधी मनुस्मृति का जिक्र करते हैं, उसी मंच पर पुणे में राहुल गांधी मनुस्मृति का जिक्र करते हैं और वही हिजाब और धर्म की
0: राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा है।
2: ये हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम राहुल गांधी कर रहे हैं, मेरी तो बात सुन ली तो राहुल गांधी कर रहे हैं। आपको बुरा नहीं लगता है?
0: मेरी भी बात
2: सुन बुरा नहीं लगता है? नहीं लगे मुझे हिंदू फेस्टिवल्स का इस तरह मेरा बड़ा स्ट्रांग व्यू है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई पैरोल एक बार भी नहीं मिलनी चाहिए। ये लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप बिना लॉजिक के कहीं की चीज कहीं ले आकर
4: आप ये बताइए कि
2: मौलाना मौलाना की बात मौलाना है जो जेल में फंसे हुए
1: हैं, कितने पादरी जो फंसे हुए,
2: क्या उनका जिक्र हुआ?
1: हुडा जरीवाला डिड अ बिट ऑफ अ फ्रॉइडियन स्लिप हियर व्हेन शी टॉक्ड अबाउट यू नो व्हेन वी हैव द व्हाट द केस यू वर रेफरिंग टू राइट नाउ। Yeah, she said that the Shah Bano rape judgment, it wasn't the Shah Bano, it was the Bilkis Bano. But Shah Bano is again, Shah Bano again is a very interesting thing to bring up at this time.
3: Shah Bano guilt came out.
1: Okay, so let me quickly give you the data for what is being spoken of here. Look, so I want to quickly give you the data for what is being spoken of here. Yes, it is a fact that you had the 17th parole that was granted to somebody like a Gurmeet Singh. And I think it is important that this issue was brought up for the simple reason that this brings out the complete disingenuous way in which the issue of women is debated by politicians across the board. Why is this man being given parole is a good question to ask of the BJP government, which has agreed. Yes, the court granted it, but yes, the BJP government also gave its assent. Imagine he was convicted in August 2017, and in the last 20 years, he has spent over 450 days out of jail. This should not go unquestioned. But at the same time, when we're talking about smashing patriarchy, Huda Zariwala, the lady whose name you mentioned, Shah Bano, that hangs, that cloud hangs over the Congress party, over Rahul Gandhi. If you went against a poor woman who was getting 200 rupees alimony from her husband, what patriarchy are you smashing, ma'am?
5: Okay. I want to first mention about the Bilkis Bano case and then come to the Shah Bano case. I will come to that. So Bilkis Bano ke rapists are properly garlanded, welcomed by the BJP. How is that allowed? I mean, this is a party that literally understands that rapists are the people that shouldn't even be allowed entry to the gate, let alone given fat, you know, positions. Hmm. This is the same RSS. I mean, I wonder on what high horse they're sitting.
1: Will you come to Shah Bano?
5: Yeah, I'm coming to that.
1: Yes.
5: As far as Shah Bano is concerned, see, we are not in the era of Congress at the moment, right? We are at the era of BJP. So let's talk about BJP. जो भी
3: कर्नाटका विल यू टॉक अबाउट शाह बानो,
5: तेलंगाना विल यू टॉक अबाउट शाह बानो, हिमाचल विल यू टॉक अबाउट it is the BJP at the center. So we're going to talk about
1: BJP. No, but Rizal Sarivala, the result of the Shah Banu judgment is

0: पी रहे हैं तो मतलब पुरुषों के पास या तो सम्मान नहीं है, चरित्र नहीं है, या तो महिलाओं के पास फेफड़े नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे इन्होंने कहा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये ऐड जो था वो आपत्तिजनक था, हो सकता है आपकी आपको आपत्ति लगी हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल कोणार्क के मंदिर को और खजुराहो के मंदिर को भी आपत्तिजनक मानेंगे और उनको तोड़ने के लिए आप कब सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, कर दीजिए यहीं से।
1: तो आपको लग रहा है ये पेट्रियार्किकल था?
0: बिल्कुल पेट्रियार्किकल है। अरे अगर अगर अगर आप कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं इससे आहत हो रही हैं, तो हमारी तो जो संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशन है, वो तो इतना प्रोग्रेसिव है कि हमारे मंदिरों में काम को एक तरह से पूजा गया है, और हम जब काम से ऊपर उठते हैं तो हम मंदिर के अंदर जाते हैं और हम शुद्ध होकर के प्रार्थना करते हैं, तो उसका एक बहुत ऊंचा महत्व है, उसको आप नहीं देख रहे हैं, उससे हमारी संस्कृति आहत नहीं हो रही है।
1: आप बड़े छात्र नेता हो क्या? आप एकदम साफा भी एकदम बिहार से मिथिला का पहन करके आए हो।
0: एस्थेटिक्स होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसे छात्र नेता वाली कोई बात
1: नहीं। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए।
2: सबसे पहले ये सवाल
3: करना चाहूंगा, इन्होंने बात करी सिगरेट,
2: सवाल था
1: गाय आशुतोष जी का, जोड़ लेते हैं
3: गाय केवल सिगरेट। राहुल गांधी ने कहा कि लड़के गालियां देते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता और लड़कियां गालियां देती हैं तो बुरा माना जाता है। हाँ, अरे लड़के भी भी गाली देते हैं तो वो बुरी बात है।
1: हाँ,
3: वो, सही वो क्यों नहीं, वो जो बात इन्होंने कही वो
1: सिगरेट सिंबॉलिक है।
2: एकदम आशुतोष जी की बात कह रहा था भाई, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, शराब भी नहीं पीता, और हमारे हम तो जहां से आते हैं, मैं प्रयागराज प्रतापगढ़ से आता हूँ, हमारे अब तो नहीं तो लड़का सिगरेट पी रहा है बाजार में तो हम लोग के यहाँ तो उसकी शादी की मुश्किल हो जाती थी, अब नहीं होती है, इवॉल्व हुआ, लेकिन फिर भी लड़के का फेफड़ा खराब होगा और लड़की कैरेक्टर, ये आपने अपने दिमाग में रखा हुआ, लड़के और लड़की दोनों का फेफड़ा और कैरेक्टर दोनों खराब होगा। अगर लड़का सिगरेट पी रहा है तो उसका भी कैरेक्टर खराब होगा। नशा नशा होता है, आप लोगों की इस डेफिनेशन की वजह से जो नशे के खिलाफ है वो भी लोग ठीक से बात नहीं कर पाते। और दूसरा भाई बस करो, रक्षाबंधन के एड को खजुराहो, कोणार्क, काम, क्रोध,
0: आपकी भावनाएं हाथ ली थी, आपने जो बात कही मैं नशा का समर्थन करता नहीं हूँ, ना ही मैं नशा करता हूँ, लेकिन वो सिंबॉलिक चीजें हैं कि लड़कियों को किस तरह से किसी चीज पर टारगेट किया जाता है, और अगर लड़के वही चीज किया जाते हैं तो उसको जस्टिफाई किया जाता है।
2: के साथ हमारे सारे लगभग जो हिंदू मित्र कुछ बोल सकते हैं, थोड़ा सा आपने बोला और हुदा जरूरवाला का रिएक्शन आपने देखा, ये डिफरेंस है।
4: हु डिसाइड्स व्हाट इज एवोल्यूशन एंड व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव थॉट? इज इट ओनली टू हैव सिगरेट्स और टू अब्यूज? दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी counted as evolution, can it? Or is it evolution that we've got young women who are sitting over here, who are speaking their mind, who are dressing the way that they want to? That's also means of evolution. I'm coming to you, sir. Let this lady speak. Yes.
5: Yeah. Firstly, I would like to say that I find it really ironical that given a panel on women's right and patriarchy, there are three men on the panel. And
1: which is why we have so many young women in the audience. No?
5: Yeah, but still, I just feel it's very ironical. But also, secondly, I just feel that as he pointed out that, you know, we are taking this debate to all these ancient and all that, we shouldn't make it a modern debate. Patriarchy is not a modern phenomena, it's a structure that has been going on for a very, very, very long time. So not taking
1: what does the slogan smash patriarchy mean to you? How do you smash patriarchy?
5: Do you smash it like a Hulk? I don't know, because
1: in your life, how would you smash patriarchy? Give me a personal example. So, what in your life, what does smashing patriarchy mean?
5: So for me, smashing patriarchy, for example, I have just stepped into a campus for the first time in my life, or, you know, I've been living in a hostel. For me, it's freedom. I have been, you know, I've been going to in even a patriarchal structure, for example, policing where I go, how I go, where I
1: who polices it?
5: So society, for example, my parents call, my grandfather, my all the people in my family call. Now I'm within the campus, I feel free because it's a safe campus. I can come at 9 o'clock, 10 o'clock at night. I don't have to go to the metro anymore, so I just feel safe in a coach. Even in women's coach, we don't feel safe, and so I just feel that taking this debate in a
1: if your parents would stop calling and asking where you are, and if you're safe, you think that would be smashing patriarchy?
5: For me personally, because it's a micro, we see it as a small thing, but for me it's free, it's
1: okay.
5: पेट्रियार्की
4: मे बी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: हाउ?
4: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
5: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: cuando está de ser.
1: देश का टायर, जेके टायर।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।

0: जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV.

0: And as External Affairs Minister has said, we basically want all our neighbours to grow and prosper with us. So for the last several years, we have been doing work in that direction. Now, Nepal has transformed, both in terms of physical transformation, better infrastructure, better roads, better connectivity, hydropower, but also demographically, it has seen a large transformation. Today, 60% of Nepal's population is below 35 years of age. And keeping that in mind, that trend in mind, for the last several years, it's not just that in my tenure, but last several years, we have therefore expanded our engagement with the youth of the Nepalese society, whether it will be the young political leaders at both federal level or at provincial or municipal level, people in universities, schools and colleges. That work has been ongoing. Several new initiatives have been taken. We organize, for example, visits of young MPs in collaboration with MEA and think tanks from India to spend 10-15 days in India, see what the Indian development scene is like and how Nepal's youth and young politicians or young population can fulfill their aspirations as they collaborate with India. That's been the larger objective.
1: We've got young people on both sides of the border looking for quality education, which eventually results in jobs. I studied in St. Paul's Darjeeling, and the reason I mentioned that is because, I don't know, maybe 30-35% of the students there were Nepali. Some of my oldest friends, you know, are from Nepal based on the years that I spent in St. Paul's. But what opportunities exist now for young Nepalese students in India, either at schools or in universities and colleges? And how does that fit into a larger issue of cross-border mobility and employment?
0: Well, education, as you mentioned, I mean, it has been one of the stronger pillar of our people-to-people connection. And even today, India is one of the most preferred destinations for most of the Nepali youth who want to pursue education. We support that through provision of scholarships. Annually, we provide about 1,500 scholarships. And these scholarships range from school studies in Nepal and then in India, and to higher degree programs, whether it is postgraduate or PhD programs. And most of the people are going to India are for engineering, medical sciences, or allied fields. Many of them have become successful entrepreneurs in India.
1: Lots of promise over there. Exciting times in the overall relationship. I wish we were discussing this in different circumstances, but India is always ready to help. It really depends on what is needed. Ambassador, it's been wonderful speaking to you. Thank you so much for speaking to us today.
2: Thank you. I think one person that they've been waiting to hear is Manisha Koirala. So thank you very much for joining us here at NDTV and Viksha. We are honored.
3: आपसे बातचीत के लिए बहुत सारे परिचय मैंने तैयार करे, बहुत सारे इंट्रोडक्शंस मैंने तैयार करे, और वो इंट्रोडक्शंस मेरे नहीं थे, वो उन सब लोगों के हैं जो आपकी फिल्मों को इस पूरे समय में देखते रहे हैं. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया. इससे खूबसूरत लव लेटर आज के दौर में भी कोई नहीं लिख पाया है जो उस गीत ने उस समय उस दौर में तय किया. इन सब गीतों को जब हम देखते हैं तो एक तरफ हमें नेपाल की परिस्थिति भी दिखाई देती है और दूसरी तरफ ये बात भी है कि सिनेमा ने कैसे लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया है, सिनेमा के किरदारों ने कैसे उन आवाज़ों को मंच दिया जिनके पास शायद आवाज़ नहीं थी. और आपके ऐसे किरदार, चाहे 1942 लव स्टोरी हो, सलाम बॉम्बे हो, चाहे उसके बाद की जो फिल्में रही हैं उन सब में हमने उन किरदारों को देखा. आज के वक्त में जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं इस पूरे दौर को, भारत और नेपाल के रिश्ते आपको कहाँ खड़े दिखाई देते हैं सिनेमा के आईने से, सिनेमा के चश्मे से?
4: मुझे तो लगता है कि जो भारत और नेपाल का जो एक यूनिक रिश्ता है, वेदर हम सब जानते हैं कल्चरली, रिलीजियसली, इन सो मेनी वेज, लैंग्वेज वाइज, यू नो, देर इज़ अ सर्टन लेवल ऑफ बॉन्ड. और मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि हम लोग आए हैं और हम लोग एक दिन ऊपर चले जाएंगे, will not, but the border between the two nation, the friendship between the two nation will forever remain. And we as human being, mortal human being, we should always keep that in mind and do whatever we have to do. अभी आपने फिल्मों की बात कही तो मैं यही चाहूँगी कि एक कोलैबोरेशन हो नेपाल फिल्म इंडस्ट्री और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ कुछ आइडियाज़ कुछ नॉलेज आदान प्रदान हो कुछ अच्छे काम हो टुगेदर विल बी वंडरफुल
3: इनफैक्ट जब मैं आपकी फिल्मों का ही जिक्र कर रही थी बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें बैठकर सुन रहे हैं वो ज़रूर इस बात से अग्री करेंगे मनीषा जी के बहुत सारे एवीज़ और पिक्चर्स भी इस वक्त चल रहे हैं तो वो वक्त जब भारत में आपकी फिल्मों के बाद जिन जिन घरों में लड़कियां पैदा हुई उनका नाम मनीषा रखा जाना शुरू हो गया घुंघराले बाल एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया मनीषा जी की जो आँखें हैं उनको एक विशेषण के रूप में लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया ये है ओजी ट्रेंड सेटर और इसलिए मैं चाहूँगी एक बार प्लीज़ आप उनके आर्ट फॉर्म के लिए उनके सिनेमा के लिए ज़रूर ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें
4: थैंक यू सो मच
3: तो आज
4: लेकिन इसमें मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है क्रेडिट तो मेरी माँ बेटी है
5: सुशीला जी का
4: मेरे पिताजी और मेरे
3: गंगा हमेशा हिमालय से बहती हैं
4: जी
3: और उसके बाद फिर आगे तक पहुंचती चली आती हैं तो सोर्स हमें दिखाई दे रहा है
2: यू एंड योर रिस्पेक्टेड मदर सेइंग दैट यू वॉच अ लॉट ऑफ ओटीटी नाउअडेज बट एनी फिल्म्स दैट यू वॉच्ड इन द रीसेंट टाइम्स हाउ'स बीन दिस जर्नी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन नॉट जस्ट इन बॉलीवुड इन द ओवरऑल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एनी थॉट्स ऑफ द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन द ओटीटी कल्चर द न्यू ओरिजिनल कॉन्टेंट दैट इज कमिंग इन एंड एनी कॉमेंट्स ऑन द लेटेस्ट फिल्म दैट हैव कम इन एनी फेवरेट्स
4: So, I think the whole world's, there's a nice transition that is happening since 90s to now. Earlier, cinema was focused towards starship. Now, I think the content is the star. And which is great. You see the floods of talent coming in, which not necessarily a hero material or a heroine material, but flooded with talent and flooded with, you know, zeal. So I love watching movies which could be commercially super hit like Dhurandhar. Or I would love to watch a movie like Laapata Ladies, you know. And because I think now the OTT platform gives you options. You can see everything. And because of OTT platform, you don't, you know, it's like earlier, a big production house, big hero, big heroine, and that sort. Today, because of content driven, there's many different kind of actors, many different kind of directors, many different kind of, there's the choices. As long as you're talented and you have something to show, I think you have the viewers.
2: And thank you very much, Manisha.
4: Thank you for having me. Thank you.
2: We are honored to have you. Thank you very much.
4: Thank you.
6: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
7: Hey Kia, navigate me to the National Archery Club. What time is the medal ceremony?
8: The medal ceremony begins at 6:30 p.m.
9: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
10: Kia. Movement that inspires.

0: the Trishuli Army base camp right now, and as you can see, the arrangements are here being made for the rescue mission for all the victims who are still stuck. This is the Trishuli Bazaar of the Nuwakot district, the biggest marketplace of this area. Now, this is what remains of that biggest bazaar of this area. This wasn't just a marketplace for the locals, but also a big tourist attraction of the tourists who were reaching here and moving ahead towards Mansarovar.
1: Police aaya ki jaldi jaldi aap log dukan band kariye, nadi badhne wala hai. तो नदी बढ़ने वाला तो इतना ऊपर तो आएगा नहीं, कभी कोई नहीं सोचा था. लेकिन जब 10 मिनट के बाद पता चला कि वो भोटी कोसट डैम फूट गया, तब ये पता चला कि एक धागा नहीं बचेगा. तब भागते भागते हम लोग अगर आधा मिनट भी लेट किए रहते तो हम लोग भी तीन आदमी और चल गए रहते.
2: 18 वर्ष से जाते.
0: मदद के लिए आपसे आवाज़ लगा रहा था.
2: आवाज़ लगा रहा था अंकल जी उसको चक्कर नाम भी चल जाते पूरा बलुआ से. तो
0: हम मेरी हाथ देने की कोशिश की आपने?
2: हाथ दिए उसको, हम कॉलर भी पकड़े नहीं पकड़ा.
3: आप लोग ये कब से बांट रहे हो?
4: कॉल से बांट रहा हूँ जी.
3: अभी तक कितने लोगों को बांटे?
4: कॉल आज 200 कॉल, 200-300 ज्यादा से कॉल भी बांटा था आज 200 को.
3: 500 लोगों को, ट्रक ड्राइवर्स और जो भी फंसे हुए हैं सब लोगों को.
4: जी जी, सब लोग को, ड्राइवर नहीं.

0: degree programs, whether it is postgraduate or PhD programs. And most of the people are going for going to India are for engineering, medical sciences, or allied fields. Many of them have become successful entrepreneurs in India.
1: Lots of promise over there, exciting times in the overall relationship. I wish we were discussing this in different circumstances, but India is always ready to help. It really depends on what is needed. Ambassador, it's been wonderful speaking to you. Thank you so much for speaking to us today.
0: Thank you.
2: I think one person that they've been waiting to hear is Manisha Koirala. So thank you very much for joining us here at NDTV and Viksha. We are honored.
3: आपसे बातचीत के लिए बहुत सारे परिचय मैंने तैयार करे, बहुत सारे इंट्रोडक्शंस मैंने तैयार करे, और वो इंट्रोडक्शंस मेरे नहीं थे, वो उन सब लोगों के हैं जो आपकी फिल्मों को इस पूरे समय में देखते रहे हैं. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया. इससे खूबसूरत लव लेटर आज के दौर में भी कोई नहीं लिख पाया है जो उस गीत ने उस समय उस दौर में तय किया. इन सब गीतों को जब हम देखते हैं तो एक तरफ हमें नेपाल की परिस्थिति भी दिखाई देती है, और दूसरी तरफ ये बात भी है कि सिनेमा ने कैसे लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया है, सिनेमा के किरदारों ने कैसे उन आवाज़ों को मंच दिया जिनके पास शायद आवाज़ नहीं थी. और आपके ऐसे किरदार, चाहे 1942 लव स्टोरी हो, सलाम बॉम्बे हो, चाहे उसके बाद की जो फिल्में रही हैं उन सब में हमने उन किरदारों को देखा. आज के वक्त में जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं इस पूरे दौर को, भारत और नेपाल के रिश्ते आपको कहाँ खड़े दिखाई देते हैं सिनेमा के आईने से, सिनेमा के चश्मे से?
4: मुझे तो लगता है कि जो भारत और नेपाल का जो एक यूनिक रिश्ता है, वेदर हम सब जानते हैं कल्चरली, रिलीजियसली, इन सो मेनी वेज, लैंग्वेज वाइज, यू नो देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ बॉन्ड. और मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि हम लोग आए हैं और हम लोग एक दिन ऊपर चले जाएंगे, विल नॉट, बट द बॉर्डर बिटवीन द टू नेशन, the friendship between the two nation will forever remain, and we as human being, mortal human being, we should always keep that in mind and do whatever we have to do. Abhi aapne filmon ki baat kahi to main yahi chahungi ki ek collaboration ho Nepal film industry aur Bombay film industry aur Indian film industry ke sath. कुछ आइडियाज़, कुछ नॉलेज आदान प्रदान हो, कुछ अच्छे काम हो, टुगेदर विल बी वंडरफुल.
3: इनफैक्ट जब मैं आपकी फिल्मों का ही जिक्र कर रही थी, बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें बैठकर सुन रहे हैं वो ज़रूर इस बात से अग्री करेंगे, मनीषा जी के बहुत सारे एवीज़ और पिक्चर्स भी इस वक्त चल रहे हैं, तो वो वक्त जब भारत में आपकी फिल्मों के बाद जिन जिन घरों में लड़कियाँ पैदा हुई उनका नाम मनीषा रखा जाना शुरू हो गया, घुंघराले बाल एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया, मनीषा जी की जो आंखें हैं उनको एक विशेषण के रूप में लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, ये हैं ओजी ट्रेंड सेटर. और इसलिए मैं चाहूँगी एक बार प्लीज़ आप उनके आर्ट फॉर्म के लिए, उनके सिनेमा के लिए ज़रूर ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें.
4: थैंक यू सो मच.
3: तो आज
4: लेकिन इसमें मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट तो मेरी माँ बेटी हैं,
2: सुशीला जी का.
4: मेरे पिताजी और मेरे.
3: गंगा हमेशा हिमालय से बहती हैं
4: जी,
3: और उसके बाद फिर आगे तक पहुंचती चली आती हैं, तो सोर्स हमें दिखाई दे रहा है.
2: यू एंड योर रिस्पेक्टेड मदर सेइंग दैट यू वॉच अ लॉट ऑफ ओटीटी नाउअडेज, बट एनी फिल्म्स दैट यू वॉच्ड इन द रीसेंट टाइम्स, हाउ'स बीन दिस जर्नी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट इन बॉलीवुड, इन द ओवरऑल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एनी थॉट्स ऑफ द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द ओटीटी कल्चर, द न्यू ओरिजिनल कॉन्टेंट दैट इज कमिंग इन, एंड एनी कॉमेंट्स ऑन द लेटेस्ट फिल्म्स दैट हैव कम इन, एनी फेवरेट्स?
4: So I think the whole world's there's a nice transition that is happening since 90s to now. Earlier cinema was focused towards starship, now I think the content is the star, and which is great. You see the floods of talent coming in, which not necessarily a hero material or a heroine material, but flooded with talent and flooded with, you know, zeal. So I love watching movies which could be commercially super hit like Dhurandhar.